0: म्यूजिक की सोच की और आपकी आपकी आवाज
1: लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है शायरी सच बोलती है।

0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।
1: हफीज होशियारपुरी।

0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज।
1: गजल पेशे खिदमत है हसरत तुम्हानी की।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यदिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, दुरूस साबका में सीरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाब में हमने कुछ बातें अर्ज की। कुछ जिक्र तो था जजीरा अरब के बारे में कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस जजीरा अरब का क्या हाल था, क्योंकि अल्लाह ने हुजूर की बेसत के साथ इसका कुरान में भी खास तौर पे जिक्र किया है कि वह इन कानून मिन कब्ल लफी दलाल मुबीन, कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले ये लोग खुली गुमराही में पड़े। उसके बारे में हमने कुछ बातें अर्ज की और फिर उसके बाद वो मुबशरात और वो मुअश्शरात, मुअश्शरात का माना यानी वो इशारात, मुबशरात का माना होता है किसी चीज के बारे में खुशखबरियां। तो ये मैंने सीरत के पहलू से पहले अर्ज किया था कि ये सारी चीजें ऐसे नहीं है कि खुद ब खुद एक इत्तेफाक है, बल्कि ये बिल्कुल अगर आदमी बड़े तअम्मुल से, गौर से, फिक्र से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हर पहलू पे नजर डाले तो समझ आता है कि खालिक कायनात ने ये सारा इंतजाम, ये सारी बिसात जो है ये इसीलिए बिछाई गई। ये ऐसा नहीं कि इत्तेफाक ऐसा हो जाए, यानी आप किसी भी पहलू पे नजर डालें। यही मैंने अर्ज किया था कि उस वक्त दुनिया में दो सुपर पावर्स थी, एक रूम और एक फारस, लेकिन ये सरजमीन हिजाज एक जमीन थी जिसपे दोनों सुपर पावर का कंट्रोल नहीं था। तो अल्लाह तबारक व ताला का इस खित्ते को मंतखब करना हुजूर की विलादत के लिए, तो इसमें आखिर कोई बात तो ऐसी थी कि दो ताकतें एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, एक मावरा नहर तुर्कमेनिस्तान की तरफ और एक अल्बानिया से लेकर हबशा से लेकर यहां तक ये दोनों ताकतें बाहर से घिरे हुए हैं, लेकिन ये दरमियानी टुकड़ा किसी के तसल्लत पे नहीं। और अल्लाह पाक ने इसी जगह अपने उस आखिरी नबी खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, क्योंकि ये तो फिर आपके अपने तदब्बुर पे होता है। अब देखें ना जी, जैसे आजकल सुना आपने और पढ़ा आपने अखबारों में भी, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का एटमी धमाके करना, ये करना, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। तो इस पर एक जो साइंसदान है वो अपनी नजर डालेगा, जो सियासी लोग हैं वो अपनी नजर से सोचेंगे, जो इक्तसादी लोग हैं वो अपनी नजर से सोचेंगे कि इसमें कितना फायदा कितना नुकसान, वो जरब तकसीम लगाएंगे, और आमतुन्नास जो हैं वो अपने फिक्र से सोचेंगे, और एक कुरान और सुन्नत का तालिबुल इल्म जो है उसे अपने फिक्र नजर की रोशनी में सोचना पड़ता है कि ये भी कोई ऐसी चीज तो जरूर है कि जिस साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का साल है उसी साल में हाथियों के बादशाह ने हमला किया जो आप पढ़ चुके, और हाथियों के हमले को खत्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों को भेजा, बाबील को, बड़ा मारूफ किस्सा है, और तीन पत्थर लेके आए और गिराए गए और वो खत्म कर दिए गए हाथी। तो ये वो तीन पत्थर क्या थे जिनको अल्लाह ने खसूसी तौर पे कुरान में जिक्र किया, वरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारत मिन सिज्जीदिन, कि हमने वो तीन परंदे भेजे कि अबाबील और ताकि वो उन पे पत्थर जो सिज्जील एक खास जहन्नम की आग में पकाए गए, आम पत्थर नहीं थे कि पहाड़ के उठा लो। तो इसी से वो आइटम के जर्रे पे आप गौर करें कि दुनिया उस जर्रे पे पहुंची कि एक जर्रे से भी इतनी बड़ी चीजें जो है वो तिबा की जा सकती है। तो असल चीज तो ये इस्लाम ने पेश की थी, कुरान ने पेश की थी, फिर अपनी अपनी सोच से लोग वहां पहुंचे कि ये एटम का जर्रा क्या है। अच्छा, इस एटम के जर्रे का उस साल पैदा होना जिस साल नबी पैदा हुआ हो क्या वजह है आखिर, इस पर आप गौर करें। अल्लाह ने आप इल्म दिया है, पढ़े लिखे लोग हैं, कि आखिर उसी साल ये अल्लाह बाग ने क्यों एटम का जर्रा पैदा किया। उससे पहले मुख्तलिफ कौमों पर अदाब आ चुके हैं, किसी को सयाह से मारा गया, किसी को बिजली की कड़क से मारा गया, किसी को पानी में डबोया गया, किसी की बस्तियों को उलट के फेंक दिया गया, कहीं हवा भेजी गई, लेकिन ये तक अजाब किसी पे नहीं भेजा गया कि ऊपर से एक छोटा सा परंदा उड़ता हुआ आए और एक छोटी सी कंकर डाल दे। और वो अगर ऐसे आगे हालत ऐसी पैदा कर दे कि फजालहुम का असफिम अकूल, ऐसे कि जैसे कोई घास खा के चबा चबा के जानवर फेंक देता है ना, इतनी बड़ी चीजें उस तरह हो जाए। अच्छा, इसी तरह आप दूसरी बात पे गौर करें कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का जमाना आया तो आसमानों पे पहरे शदीद हो गए। जिन्नात से काहिन कहें भी खबर ले आओ, खबरें ले आओ ताकि हम अपनी कौम को खबरें दें। वो कहें कैसे खबरें ले आए।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बहुत सारे लोग बल्कि बड़े अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी हजूर के बेटों के नाम तैयब ताहिर लिख देते हैं, हालांकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी बेटे का नाम तैयब और ताहिर नहीं था। आपका पहला बेटा अल कासिम था, दूसरा बेटा अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला के लकब दो थे, हजूर उसको तैयब पुकारते थे और माँ उसको ताहिर पुकारती थी। ये आपका लकब था, नाम अब्दुल्ला था। और एक बेटा हजूर का नाम इब्राहिम था, जो बीबी मारिया किबतिया से जो मकौकस ने हजूर को हदिया भेजा था उसमें उस औरत से पैदा हुई। और कासिम जो है तकरीबन वो भी 6-7 साल की उम्र में फौत हो गए, अब्दुल्ला भी सगर सिन में फौत हो गए, और इब्राहिम जो है वो तो अभी दूध पीने की उम्र में थे कि फौत। इसलिए एक सही हदीस मुबारक में है, हजूर ने फरमा इन लहू बुरज़ियतन फिल जन्ना, मेरे बेटे के लिए अल्लाह ने जन्नत में भी दाया का इंतजाम किया है, वो जो दूध पिलाती है। और हुजूर ने यह भी फरमाया था कि अगर मेरे ऊपर नबूवत का दरवाजा बंद ना हो जाता तो शायद मेरा बेटा इब्राहिम जो है ये भी अल्लाह का नबी है। इतनी शान। और आपकी चार बेटियां थी, सैयदा फातिमा, सैयदा जैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम कुलसूम, रिजवान अल्लाह तआला अलैहिन्न अजमईन, ये सब के सब जो है बीबी खदीजा की पत्नी। और इसी से दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान दीन का ये प्रोपेगंडा कि हजूर ने इतनी शादियां की और हजूर ने इतनी शादियां की और हजूर ने इतनी शादियां की, जैसे रुश्दी बदबख्त ने लिखा, तस्नीमा नसरीन ने लिखा, और इसी किस्म के मलऊनीन जिनको असल में तो बुग्ध है इस्लाम से और दीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और फिर वो इल्जाम लगाने में बहानों की तलाश में होते हैं कि कोई हमें मौका मिल जाए तो उनने ये साबित करने के लिए कि देखो जी हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने तो एक भी शादी नहीं की और हजूर पाक ने तो 11 शादियां फरमाई, तो नऊज़ बिल्ला आपको तो बस औरतों का ही हर वक्त ख्याल था कि जहां गए शादी कर ली, जहां गए शादी कर ली। तो ये एक इल्जाम है जिसकी कोई हकीकत, आप खुद अंदाजा फरमाएं कि आपके बच्चे की उम्र अगर 25 साल हो तो आप उसके लिए 40 साल की बीवी नहीं ढूंढते। और खास तौर पे आप तो डॉक्टर हैं माशाल्लाह, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, आप देख लें कि सरजमीन मक्का की गर्मी हो तो 40 साल की उम्र के बाद औरत में रहता कौन सी जवानी रहती। चलो ठंडे इलाके की औरतें तो फिर भी बेचारी कुछ लंबी जिंदगी गुजार लेंगी, लेकिन सरजमीन मक्का की गर्मी हो और यहां पर खजूर की गिजा हो तो 40 साल के बाद औरत में बाकी क्या रह जाता है कि नऊज़ बिल्ला उसके लिए महज शहवानी जज्बे से शादी की जाए, फिर आदमी कुंवारी लड़की से शादी करे। और हुजूर ने तो जब तक बीबी खदीजा जिंदा रही 25 साल तक और कोई शादी नहीं, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल, जौजा की उम्र 40 साल, और हुजूर फिर 50 साल की उम्र पर पहुंच गए और आपने कोई शादी नहीं की। तो जो जवानी का हिस्सा था हजूर का वो तो सारा बीबी खदीजा के साथ गुजर गया। तो जिससे साबित हुआ कि हुजूर की कोई शादी जो थी दरअसल वो अपने मंशे से नहीं थी, बल्कि यहां भी मेरे अल्लाह की निगरानी थी और अल्लाह के फैसले। इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद में शादी हुई बीबी आयशा से, बाद में शादी हुई बीबी सफिया से, बीबी उम्मे सलमा से, वो भी बूढ़ी औरत थी, बीबी सौदा से, वो भी बूढ़ी औरत थी। बीबी सफिया से क्यों हुई कि खैबर के सरदार की बेटी थी, सब लोगों ने कहा कि हजूर सरदार की बेटी, अच्छा है कि अगर आपने किसी और को देना है बांदी बना के तो बेहतर है अपनी बांदी बना ले ताकि कुछ तुम सरदारों की इज्जत हो जाए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बिना पे शादी की। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस नबी के उठने पे सोने पे भी अल्लाह का पहरा हो उस पैगंबर की शादियां मंशा खुदावंदी के बगैर कभी हो सकती। यही वजह थी कि जब सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा पे तोहमत लगी, मुनाफिकीन ने तोहमत लगा दी, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बड़ा लंबा वाकया है कुरान में भी मौजूद है, हजरत उमर से पूछा कि उमर तुम्हारी क्या राय है कि बीबी आयशा पे तोहमत लगा दी गई है, मैं इसका क्या करूं, बीबी आयशा को छोड़ दूं, तलाक दे दूं, क्या हल करूं। तो हजरत उमर ने कहा हजूर पहले तो ये आपका दाखिली मामला है, इसमें हक नहीं है दखल देने का, लेकिन अगर आप से राय लेते हैं तो मुझे भी इजाजत है कि मैं आपसे एक दो बातें पूछ लूं, आप नाराज तो नहीं होंगे। हजूर ने फरमाया कि नहीं। तो हजरत उमर ने पूछा कि या रसूल अल्लाह بی بی عائشہ سے جو شادی ہے یہ آپ نے اپنے منشے سے کی ہے یا حکم خداوندی سے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، وہ تو جبریل اس کی تصویر لے کر بھی میرے پاس آئے تھے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ تو اس نے کہا حضور ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے اچھی لڑکی مل جاتی ہے، اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک لڑکی نہیں ملی، اے غلط لڑکی ڈھونڈ لی اللہ نے آپ کے لیے، یہ تو پھر اللہ میں نقص ہوا، اور اللہ تو ہر نقص سے پاک ہے۔ اور اس کے بعد میں کہا حضور میرے بھائی ایک دوسرا سوال بتا دیں، پھر آپ کی مرضی جو فیصلہ کریں، آپ کے بدن مبارک پر یہ اڑتی ہوئی مکھی جو ہے گندی ہے بیٹھتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں۔ میں کہا حضور آپ پر اللہ گندی مکھی تو نہیں بیٹھنے دیتے، آپ کے بستر پر ناپاک عورت کو بیٹھنے دیں؟ قصر ریان رسول اللہ، حضور کا چہرہ کھل۔ حضور نے فرمایا عمر تمہاری رائے بڑی عجیب ہے۔ اور گھر پہنچی اور اللہ کا قرآن نازل ہو گیا بی بی عائشہ کی صفائی میں۔ تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر صرف سیرت رسول کے اس پہلو پہ آپ غور کریں کہ حضور کی شادیاں کیوں ہوئیں، کب ہوئیں، کیا عمر تھی، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بھی سیرت کا ایک عظیم پہلو ہے جس کو دشمنوں نے حضور پر اعتراض کا ذریعہ بنا دیا۔ برادران اسلام، دروس سابقہ میں ہم نے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت سیدنا محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پہلوؤں پہ بات کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت مبارکہ، پھر آپ کا مکہ مکرمہ میں واپس تشریف لے آنا، عبد المطلب کی کفالت کا زمانہ، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد المطلب کی موت کے بعد اپنے چچا ابی طالب کی کفالت میں آنا، اور ابی طالب کی کفالت کے زمانے میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارتی امور کے لیے شام کا سفر، اور اس میں میسرہ غلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مشاہدہ احوال رسول پاک

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अब जब हजर असवद का वक्त आया, आप सब कौम लड़ने मरने पे आ गए। हजूर पाक की जात थी जिन्होंने चादर बिछाई और कहा कुरैशियों से कि मत लड़ो, तुम हर आदमी को ने पकड़ ले और उठा के ले चलो। जब काबा के करीब आए, हजूर ने फरमाया तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब काबतुल्लाह में ये पत्थर जो है मैं अपने हाथ से लगाऊंगा। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हजर असवद को अपने हाथ से काबतुल्लाह में रखा। ये इत्तेफाक की बात है कि बाद में करामता ने ये यानी हजर असवद जो है, करामता एक बहुत बड़ा बेदीन फिरका गुजरा है, उन्होंने एक दफा अपना काबा बनाया था बहरीन, और वो अपने काबे के लिए यहां से हजर असवद तोड़ के ले गए। बाज तारीखों में है कि 20 साल और बाज तारीखों में है कि 70 साल का अरसा जो है ये फिर करामता के पास रहा। अच्छा, और खुदा की शान देखो कि जैसे आज यानी 1419 में 14 सदी के बाद, क्योंकि मैं 20वीं सदी का जरा कायल कम हूं, वैसे आजकल तो बड़ा प्रापगंडा होता है ना, 20वीं सदी में दाखिल हो रहे हैं, 20वीं सदी में दाखिल हो रहे हैं, पता नहीं यानी मुसलमान होके काफिर बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आई आज तक 20वीं सदी कहां से आ गई। वो भाई 20वीं सदी तो ईसाइयों की है, उसका मुसलमानों से क्या ताल्लुक, ये 1999 1998 ये क्या है, ये तो सने मिलाद है, इसका ताल्लुक तो ईसाइयों से है, मुसलमानों के साथ क्या ताल्लुक है 20वीं सदी का। लेकिन अफसोस है हर मुसलमान अखबारें पढ़े जनाब 20वीं सदी में हम दाखिल हो रहे हैं और 20वीं सदी में हम यूं दाखिल होंगे और 20वीं सदी में हम यूं दाखिल होंगे। खुदा के बंदे कौन सा पहाड़ मार रहे हो, 20वीं सदी में तुम दाखिल हो रहे हो, पता नहीं अल्लाह पहले मार दे, तुम कैसे दाखिल हो रहे हो। इतनी बड़ी जिहालत की बातें करते हैं, ये नहीं सोचते कि दुश्मन का प्रापगंडा है कि इस्लाम की हिजरी तारीख हमारे दिमागों से निकल जाए, इतना प्रापगंडा कर दिया जाए कि इस्लाम की अजमत का जो निशान है तारीख हिजरत वो हमारे दिमागों से सर्फ हो जाए। कभी आपने सोचा है, आप कहते हैं जी के यानी अच्छे खासे पढ़े लिखे दोस्तों में चौबी कब भी हमारा दर्स हो, कहते नहीं मंडे शाम, वो भी मंडे तो ये मून डे को कहते हैं, चांद चांद देवता, संडे सूरज देवता, ये तो काफरों के नाम है, आपने पता नहीं कहां से याद किए हुए, ये सब काफरों के नाम है, वेडनेसडे संडे मंडे ट्यूजडे ये सारे जो है ये तो काफरों के नाम है, जो सूरज के पुजारी और तारों के पुजारी उनके नाम, इनका इस्लाम से क्या ताल्लुक। इस्लाम सीधी बात करता है, आदि इतने तलातार बस 1 2 3 4, या वो नाम लेता है जिसका नाम कुरान ने लिया है, दानू दिया योमिल जो बातें फंसा हुए इलाज खरीदा बदर भाई, तो बहरहाल और शब्द का नाम लेता है तो कुरान ने नाम लिया। अब जनाब बहरहाल कहने का मकसद ये था कि ये शर्फ जो है ये भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब हुआ कि उन्होंने हजर असवद जो है, अब देखें ना ये अल्लाह की कुदरत है, समझ नहीं आती यानी सीरत के किस किस पहलू को आप देखें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अब सैयदना सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु चले, हजरत उस्मान के पास आए, उन पे इस्लाम पेश किया, फअस्लम उस्मान, हजरत उस्मान भी मुसलमान हो गए। फिर हजरत साद इब्ने अबी वक्कास के पास आए, उन पे इस्लाम पेश किया, हजरत साद भी मुसलमान हो गए। अब्दुल रहमान इब्ने औफ के पास आए, उन पे इस्लाम पेश किया, वो भी मुसलमान हो गए। हजरत तलहा के पास आए, उन पे इस्लाम पेश किया, वो भी मुसलमान हो गए। और इसी तरीके से अब यानी जो इस्लाम फैलना शुरू हुआ तो लोग सैयदना अबू बकर के हाथ पे इस्लाम ला रहे, और फिर फुकरा में से, ज़ोफा में से हजरत अम्मार, यासिर, समैया, सुहैब, खबाब, ये सब इस्लाम ले आए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, क्योंकि अब तो अल्लाह ने हुक्म दे दिया था ना कि अंजिर, अब तो लोगों को डराए, अब तो लोगों को दावत दें, अब तो आप लोगों को पैगाम इलाही पहुंचाएं और दावत तौहीद दें, और जो ना माने उनको अजाब जहन्नम से डराएं, क्योंकि नबी का तो वजीफा ही बशीर और नजीर होता है कि मानने वालों को बिशारत दे और इनकार करने वालों को डराए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आपने एक दिन यह किया कि सुबह सुबह जो था जबल अबी कुबैस पे चढ़ गए। आप तो जानते हैं ये मक्के का हजर असद के सामने जो पहाड़ है जिसपे अब महल्लात बने हैं, ये जबल अबी कुबैस, और इस पहाड़ की भी अपनी शान है कि हाजा अव्वल जबल वज़िअ अलल अर्ज़, ये दुनिया के पहाड़ों में सबसे पहला पहाड़ है जो जमीन में रखा गया, बाकी पहाड़ सब बाद में रहे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल अबी कुबैस पे चढ़े, और अरबी जबान में उस जमाने में रिवाज था कि अगर सुबह के वक्त में या कोई खतरनाक बात कहनी हो, लोगों तक पहुंचानी हो, तो स्पीकर या मुवासलात के जराए तो नहीं थे, लोग ऊंची जगह पे खड़े हो जाते और कहते वाह सबाह। अब हजूर ने दो तीन दफा जब आवाज लगाई, सारे मक्के वाले भागे, क्योंकि वो तो जानते थे कि अल्लाह का नबी है मोहम्मद रसूलुल्लाह। नबी नहीं मानते थे, कि सादिक अमीन तो मानते थे कि सच्चा है, अमानत वाला है, दयानत वाला है, और जिसने 40 साल में कभी अपनी जबान मुबारक से गलत बात नहीं की, और वो कभी पहाड़ पर नहीं चढ़े, और उन्होंने ऐसा तो कभी नहीं किया। सब के सब कुरैश दौड़े, बनु हाशिम दौड़े, बनु मखज़ूम दौड़े, सब दौड़े। आए तो क्या देखते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह पहाड़ पे खड़े हैं, और सारे करीब आ गए, और आपने फरमाया कि सरदारों, कुरैशियों, मक्के वालों, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें यह खबर दूं कि इस पहाड़ के पीछे तुम्हारा दुश्मन जो है लश्कर लेके बैठा हुआ है और हमला करने वाला है, क्या

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: और सारी दुनिया सीधी बात है कि वो बुराई की तरफ जाएगी, तकरीर सुनने के लिए कौन आएगा। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी है कि मैंने आपको तकलीफ भी दी और कुछ लोग भी नहीं आएंगे। बस यही है कि आप इशा की नमाज वहां मस्जिद में पढ़ा दें और उसके बाद दुआ फरमा दें, बस। आप तो तशरीफ ले आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन जब आदमी ही कोई ना हो तो बंदा आखिर तकरीर किसको करे, और मस्जिद में वो दो चार आदमी जो होंगे वो तो पहले से आपके मुतकदीन में है, हमेशा दर्द सुनते हैं, तकरीरें सुनते हैं। पर सबका ठीक, मस्जिद में तशरीफ ले गए, इशा की नमाज पढ़ी, तो बाकी ठीक सी बात थी कि वहां क्या नहीं, ज्यादा से ज्यादा 10 आदमियों के बजाय 20 आदमी हो गए। जब सलाम फेर के सुन्नतें वगैरह पढ़नी और दुआ का वक्त आया तो वाले साहब खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि देखो भाई, 10 हूं या 20 हूं, आप आए तो हैं, अल्लाह के नबी तो एक एक आदमी को जाके कुरान सुनाते थे, मेरे सामने तो कम अज कम 20 आदमी बैठे हैं। तो अल्लाह ने वाले साहब को बड़ी आवाज दी थी माशाल्लाह। तो उन्होंने जब कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया तो एक गाने वाली जो थी वो गा रही थी, तो उसके कान में आवाज पड़ी। तो उसने लोगों से पूछा कि ये क्या आवाज है। उन्होंने कहा एक आलिम है और वहां भी तकरीर है, मौली शौली मुल्ला शुल्ला किस्म का आदमी है, कुरान पढ़ा है। उसने कहा कि मैं तो कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती, आप लोग जहन्नम जा सकते हैं। तो क्या है? मैं तो अल्लाह के कुरान का मुकाबला नहीं। और उसने कहा कि देखे नहीं, मुझे पैसे दें या ना दें, गाना बंद, जब तक अल्लाह का कुरान पढ़ा जाएगा और तकरीर होगी मैं नहीं गाऊं किसी भी शक्ल। अल्लाह के कुरान के मुकाबले पे शैतान का काम। और उसके बाद फिर वो बाकायदा वहां से मजलिस छोड़ के चादर एक डाल के जहां वाले साहब तकरीर फरमा रहे थे वहां आई और तब सारा मजमा लौट आया, क्योंकि वो गाना वाना तो बंद हो गया। तो वहां आके उसने रिक्वेस्ट की कि जी मैं पीछे बैठ के कुरान सुन सकती हूं। उन्होंने कहा कि हां सुने, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अल्लाह का कुरान जब पढ़ा जाए आदमी कितना खराब क्यों ना हो, आखिर इंसान है। ये अल्लाह के कुरान की तासीर है कि मकनातीसुन लिलकुलूब, अल्लाह ने जैसे काबे को बनाया है ना दिलों का मकनातीस, इसी तरह कुरान दिलों को बदलने वाला। शर्त यह है कि जरा आप कुरान को मोहब्बत से और इखलास से पढ़ें, एक रस्म समझ के ना पढ़ें। जैसे बहुत सारे मुल्क हैं उनमें कुरान मौजूद, और इतनी में पढ़ रहा एक अजाब में पढ़ रहा था कि हॉलैंड के एक इलाके में जब राबता आलम इस्लामी का एक वफद पहुंचा तो वहां पर जब गए तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ एक मस्जिद है, और मस्जिद में गए और फिर उन्होंने अपने इमाम मस्जिद से तारुफ कराया कि जनाब ये हमारा इमाम। ठीक, बातचीत होती रही। अब इस असना में जुहर की नमाज का वक्त आ गया तो राबता के वफद वालों ने कहा कि भी चूंकि यहां का इमाम मस्जिद मौजूद है तो आप सिर्फ ये ना समझें कि चलो भाई हम मक्का शरीफ से आए हैं लिहाजा हम नमाज पढ़ाए, नहीं, इमाम मस्जिद जो है वो हक है, लिहाजा वो नमाज पढ़ाए। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि हम तो वैसे भी दो रकात पढ़े तो इसलिए बेहतर है कि मकामी इमाम नमाज पढ़ाए। तो उन्होंने फरमाया कि जब उस इमाम साहब ने नमाज पढ़नी शुरू की तो अब जनाब अल्लाह अकबर करके सुभानक अल्लाहुम्मा भी जोर से पढ़ रहा है, और उसके बाद सूरत फातिहा भी दुहर की नमाज में, और उसके

जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा बीबी मरियम गुस्से में आने की जरूरत नहीं है, ये तो तेरे रब का फैसला है और तेरे अल्लाह को बगैर तेरी शादी के बगैर किसी चीज के बच्चा पैदा करना मुश्किल नहीं, बड़ा आसान है। और अल्लाह तो चाहते हैं कि उसको एक निशानी बनाए अपनी कुदरत की, कि कोई ये ना कहे कि अल्लाह बना तो सकता है लेकिन जब तक मियां बीवी ना हूं वो भी नहीं बना सकता। अल्लाह चाहते हैं कि मैं अपनी कुदरत के तमाम नमूने दिखा दूं, मैं चाहूं तो नूर से मलाइका पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो नार से जिन पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो मिट्टी से आदम पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो आदम से हव्वा पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो मरियम से ईसा पैदा कर दूं, यखलुकु मा यशा, मेरी मर्जी में जो चाहूं जैसे चाहूं। यही तो उसकी शान। अच्छा जी, उन्होंने कहा कमाल है तो ठीक है, और न कहा बीबी तुम बात कहो ना कहो, कहा ना अमरम मकजिया, ये तो अल्लाह की तकदीर का फैसला हो चुका है, अब वो तब्दील थोड़ा होता है। अब जनाब यानी हमल भी हो गया, बदा अमल भी हो गई, अब बच्ची बिचारी बैठी रो, या लैतनी मित्तु कबल हाजा व कुंतु नसियम मनसिया, रो रही है फिर भी, हालांकि जिब्रील बातें करके कह कहती है काश मैं तो पैदा ही ना हुई होती, कम से कम चलो ठीक है मैं बेगुनाह हूं, मेरा दामन साफ है, लेकिन कौम तो नहीं जानती ना, जिब्रील की बात हुई तो मेरे साथ हुई है, पूरी बिरादरी के साथ तो नहीं हुई ना, बिरादरी मुझे जब आएगी तो मैं कैसे मुकाबला करूंगी। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें मुकाबले की जरूरत नहीं है, जब कौम सामने आ जाए तुम चुप करके सिर्फ ईसा की तरफ इशारा कर दो, हम जाने हमारा ईसा अलैहिस्सलाम जाने, कौम आ गई गुस्से में भरी हुई है, कहती या उख्ता हारून मा कान अबूक इम्रा सौइन वमा कानत उम्मुक बगिया, के भाई हारून की बहन, बाद लोगों ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम के जो भाई थे हारून उनकी बहन, ये मुराद नहीं है, बल्कि मुराद ये है कि कान रजुलन सालिहन, उस इलाके में एक बहुत बड़े आबिद गुजार थे, तो उनका नाम हारून था जिसकी तरफ निस्बत की गई। उनने कहा तेरा बाप अच्छा, तेरी माँ अच्छी, ये क्या है?

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, मोहतरम भाइयों, दोस्तों, अजीज नौजवानों, हमने अपने इन दुरूस के सिलसिले में जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतअल्लिक हैं बात पहुंची थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरा और मेराज तक, और ये बात अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ ली, समझ ली कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज मुबारक जो है और इसरा जो है वो आपके रूह माल जसद के साथ और बहालत बेदारी, यानी ये ख्वाब का वाकया नहीं, ना ये कोई रूहानी मेराज है, बल्कि ये हकीकतन जिस्मानी मेराज है और आपका सफर मुबारक जो है वो रूह माल जसद है, मक्का से बैतुल मक़द्दस तक और बैतुल मक़द्दस से आसमानों तक। इसी पर जमहूर सहाबा हैं, इसी पर जमहूर ताबईन हैं, मुहद्दिसीन हैं, अइम्मा फुकहा हैं, उलमा हैं, औलिया अल्लाह हैं, जमहूर की राय जो है वो यही है। बाकी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज मुतअद्दद मरतबा हुए हैं, कभी ख्वाब में, कभी रूहानी तौर पे, उससे किसी को इनकार नहीं। लेकिन ये वाकया है मेराज जिसका जिक्र इसरा और कुरान में है, ये वाकयतन मेराज जिस्मानी। और दूसरी बात यह है कि ये भी बहुत इख्तलाफात हैं, बाज़ उलमा फरमाते हैं कि रबीउल अव्वल के महीने में हुआ और बाज़ उलमा ने लिखा है कि रमजानुल मुबारक में हुआ और बाज़ उलमा ने लिखा है कि ये रजब के महीने में हुआ, लेकिन राजे कौल मशहूर कौल यही है कि रजब का महीना था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हिजरत मुबारक से 1.5 साल कबल जो है ये वाकया अजीम जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत शान, आपकी रफात, आपकी बुलंदी और आपकी कल्ब मुबारक के लिए तसल्ली के मेरे मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कुफार व मुशरिकीन के मुआरजे से न घबराएं, न दिलगीर हूं, ये आसमान मेरे हैं, ये जमीनें मेरी हैं, ये कायनात मेरी है, मैंने जब आपके लिए आसमानों को मुसख्खर कर दिया है तो